0: to listen of Maputo Kuriva Radio. Welcome. You are listening to this radio station of your heart. It's Maputo Kuriva Radio. And once again, we meet you to talk about movies. It's your movie update for this week. I hope you're having a great time already. Today, we talk about Indian movies, action movies, and also obsession-relating movies. I hope you're already enjoying. We're going to remind you also about how Michael's movie is doing in Maputo and Mozambique. So I hope you are connected to this radio station of your heart with the greatest time coming ahead. My name is Beth Kamadim and we have the next minute to discuss movies. We kick off with Chand Mera Dil, an Indian Hindi language movie.
1: Sorry, Chandi.
2: कैसी लग रही?
1: मेरी लग रही. चांदी सॉरी यार प्लीज. सुन गलती हो गई यार प्लीज. ओपन द डोर यार प्लीज. चांदी सुन सुन दरवाजा खोल यार.
3: चांदी बहुत रेगुलर है यार वो.
2: इसलिए पसंद है मुझे.
1: किसी का गला खराब हो रहा था मेरी वजह से तो पूरा ही ठीक कर देते हैं.
3: मतलब
1: हमेशा के लिए.
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई.
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती
4: है.
2: अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो शायद मैं भी तुझे माफ नहीं करती.

0: Dear listener of Maputo Kwaito Radio, welcome. You are listening to this radio station of your heart. It's Maputo Kwaito Radio. And once again, we meet you to talk about movies. It's your movie update for this week. I hope you're having a great time already. Today, we talk about Indian movies, action movies, and also obsession-relating movies. I hope you're already enjoying. We're going to remind you also about how Michael's movie is doing in Maputo and Mozambique. So I hope you are connected to this radio station of your heart with the greatest time coming ahead. My name is Beth Kamadim, and we have the next minute to discuss movies. We kick off with Achan Meradil, an Indian Hindi language movie.
1: Sorry, Chandi. चांद मेरी बात सुन।
2: कैसी लग रही?
1: मेरी लग रही है। चांदी सॉरी यार प्लीज सुन गलती हो गई यार प्लीज ओपन द डोर यार प्लीज चांदी सुन दरवाजा खोल यार।
3: चांदी बहुत रेगुलर है यार वो
2: इसलिए पसंद है मुझे।
1: किसी का गला खराब हो रहा था मेरी वजह से तो पूरा ही ठीक कर देते हैं।
2: मतलब
1: हमेशा के लिए
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती
4: है।
2: अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो शायद मैं भी तुझे माफ नहीं करती।

0: जो गलती की है उसके लिए माफी मांग चुका हूँ मैं, आज भी मांग रहा हूँ और मांगता रहूंगा।
1: और कितनी गलतियाँ करोगे आरव?
2: मौका लेना चाहती है क्योंकि तू अब भी उससे प्यार करती है।
1: हाँ लेकिन इज्जत प्यार से बड़ी।